मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून 2026। सुबह के 5:58 और 42 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार। समाचारों के ठीक बाद FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त

0: परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज का चिंतन, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्यादा तनावग्रस्त ना रहें। परिस्थितियां कैसी भी हों, एक न एक दिन बदलती जरूर हैं। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब भी हम किसी मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। श्री गणेश को ये वरदान अपने पिता भगवान शिव से प्राप्त हुआ कि पृथ्वी लोक पर जब भी किसी कार्य की शुरुआत होगी तो सर्वप्रथम आप ही का आह्वान किया जाएगा।

ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षम अमृतात्। देवों के देव महादेव भगवान शिव कृपालु और दया के सागर हैं। जो भी मानव शिव को समर्पित हो जाता है वो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है।

साईं बाबा ने शिरडी में रहकर प्रेम व शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का संदेश प्रेम और शांति ही है और सबका मालिक एक है, यानी संसार को चलाने वाले केवल एक ही परमपिता परमात्मा हैं।

मनुष्य का जीवन जीवन रूपी भवसागर में कभी इस तरह उलझ जाता है कि उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि किस ओर जाना है। जीवन के सभी सुख साधन छूटे लगने लगते हैं। ऐसे में केवल प्रभु ही हैं जो हमें संभालते हैं। मनुष्य केवल दुख में ही ईश्वर को याद करता है, लेकिन ईश्वर सदैव अपने भक्त को याद रखते हैं।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार

नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग, तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। कुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। कृषि की बातें में आज जिक्र करेंगे हरे चारे में लोबिया की काश्त कर दिया ना के सावधानी बरतें, इस बारे में कुछ सुझाव। भाई कोई भी फसल ले हैं, सबसे पहले ज़रूरी बात यह आव है कि हम कोई इसी किस्म लें जो उन्नत किस्म हो, पैदावार भी हमने अच्छी दिन दी हो और कीड़े बीमारियां थे मुक्त हो। तो लोबिया में एक किस्म है CH88। लोबिया की यह किस्म चारे की खेती के लिए बहुत बढ़िया मानी जा है। सीधी बढ़ने वाली किस्म है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के और छोड़े हुए हैं। इसके बीज का रंग हल्का गुलाबी भूरा या फिर हल्का भूरा हुआ है। यह किस्म में बहुत से रोग आते हैं मुक्त है। विशेषकर बात करें हम पीले मोजिक की, विषाणु रोग की, इन तया मुक्त है। इस किस्म की बिजाई सिंचित और कम सिंचाई वाले दोनों इलाकों में करी जा सके है। इसके हरे चारा जो हमने मिल जाए है वो बुआई थे 55-60 दिन के बाद हमने हरा चारा इसका मिलना शुरू हो गया है। और हरे चारे की पैदावार की बात करें तो लगभग 130-135 क्विंटल एक किले में इसका चारा हमने मिल गया है। किस्म है CS88। मैं अपने खेत ने 2-3 बार जुताई करके सुहागा पाटा लगा के बिल्कुल एक सार कर लें।

0: उनके खेत तैयारी के बाद और फिर बिजाई के समय की बात करें तो देखो लोबिया की बिजाई का जो समय है वो तो मध्य मार्च से शुरू हो चुका है और जुलाई के आखिर ती चल रहा है। अगर हमारे दौरे पानीपात के साधन ठीक हैं, सिंचित इलाके हैं अपने दौरे, तो हम इसकी बिजाई मध्य मार्च से लेकर जुलाई के आखिरी सप्ताह के बीच में कद्दे भी हम इसकी कर सके हैं, यानी कि जो समय चल रहा है इसमें भी हम इसकी बिजाई कर सके हैं ताकि हरे चारे में कोई कमी ना आवे। बीज की मात्रा की बात करें तो भाई अगर हम निरे लोबिया की काश्त कर रहे हैं तो 16 से 20 किलोग्राम बीज एक एकड़ में हमने चाहिएगा, और अगर कोई मिलमा खेती कर रहे हैं, कोई दूसरी कोई खेती कर रहे हैं इसके साथ में मिला के, तो फिर जो लोबिया का बीज है वो उसकी एक तिहाई मात्रा हमने लेनी है। बाकी इसकी बिजाई जो है वह खुड्डा में करनी है, खुड़ तक खुड़ का फासला हमने 30 सेंटीमीटर रख कर चलना है और भाई ड्रिल द्वारा हमने इसकी बिजाई करनी है। बिजाई के टाइम पे हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत में ठीक ठाक नमी हो, नमी में कोई कमी ना हो, ताकि अंकुरण उसका जल्दी होए, अपने खेत के हिसाब का भी हमने पता हो है, तो सही खेत में जब नमी है उस टाइम पर हमने लोबिया की काश्त करनी है यानी कि बिजाई करनी है। लेकिन बिजाई करने से पहले लोबिया का जो बीज है उसका राइजोबियम कल्चर का जो टीका है उससे उपचार करके और फिर फ्री आल्हा बीज हो जाए उस टाइम पर हमने इसकी बिजाई करनी है। ऊंट दलहनी फसल है, इसमें को खास से खादा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर हम बिना मिट्टी का परीक्षण कराएं और सामान्य खेत में अगर इसकी बिजाई कर रहे हैं तो फिर हमने इसकी शुरू शुरू में बढ़िया बढ़वार हमने मिल जाए, हरा चारा हमने थोड़ा जल्दी मिल जाए, इसकी अच्छी बढ़वार के लिए हमने 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने देना है। और बिजाई तो पहले जो सिंचित इलाके हैं उसमें हमने 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, बरानी इलाके में हमने 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पोरा या ड्रिल विधि से हमने अपने खेत में ड्रिल कर देनी है। मिश्रित खेती में उर्वरक जो है जो दूसरी फसल है उनकी सिफारिश के अनुसार हमने अपने खेत में देने हैं। बाकी इसमें ध्यान रखना है निराई गुड़ाई का, भाई गर्मी में जो बोई गई फसल है तो एक निराई गुड़ाई पहली सिंचाई देने के बाद में और एक फिर बत्तर आने के बाद में, क्योंकि जो खाद की मात्रा हमने दी है वह हमारी फसल के इलाके ना कि खरपतवारों के, तो निराई गुड़ाई इसमें बहुत ज़रूरी है। और निराई गुड़ाई लोबिया लोबिया की फसल में नहीं, कोई सी भी फसल हो चाहे उसमें निराई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी हो जाए ताकि जो हम खाद की मात्रा दें हैं और जो हमारी फसल है वह सही तरीके तो होए, इसलिए निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। रही बात इसमें सिंचाई की, तो भाई सिंचाई क्योंकि मई का महीना चल रहा है और आगे तापमान और भी बढ़ रहा है तो इसमें हमने 15 से 20 दिन के अंतराल पर हमने सिंचाई करनी है, और बाकी अपने खेत का हिसाब देख लें कि खेत में कितने दिन नमी रह जाए है उस हिसाब में देखें हमने इसमें अपने जो है सिंचाई का प्रबंध करना है। बाकी बिजाई के 55 से 60 दिन के बाद यानी कि 2-1 महीने बाद हमने हरा चारा देना शुरू कर दिया। तो ये कुछ मोटी मोटी बात है, अगर किसान भाई इस टाइम पे लोबिया की काश्त करेंगे, सिफारिश शुदा मात्रा खाद की देंगे और जो बिजाई का तरीका है उससे तरीके ने अपनाओगे तो इस लोबिया की फसल से भरपूर फायदा ले पाओगे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं, क्षेत्रीय संपर्कं, औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः, समयसीमा, विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलंबित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत

0: ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th of June 1975.

शाम 6:30 से आप सुनेंगे एडक बास्टन ओल्ड टेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे अंग्रेजी वार्ता। विषय रहेगा 12 ईयर ऑफ नरेंद्र मोदी सरकार एंड कॉन्सेप्ट ऑफ भारत 2047। वार्ताकार होंगे प्रशांत सिंधु।

आपके फरमाइशी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। याद रखिए, जल है तो कल है, जल का संरक्षण करें, इसे व्यर्थ बहने से रोकें।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिस इज आकाशवाणी रोहतक एट 262.47 मीटर, दैट इज 11,143 किलोहर्ट्ज। नाउ वी आर प्रेजेंटिंग प्रोग्राम विविधा। इन विविधा टुडे वी ब्रिंग अ टॉक टू यू एंटाइटल्ड 12 ईयर ऑफ नरेंद्र मोदी सरकार एंड कॉन्सेप्ट ऑफ भारत 2047। आवर टॉकर इज प्रशांत सिंधु।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ ऑफ्टन डू थंडरस इवेंट्स टेक प्लेस? लेट मी रिमाइंड यू वन सच इंसिडेंट वेयर रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज बीजेपी वोन 283 ऑफ द 543 लोकसभा सीट्स इन इंडियन जनरल इलेक्शंस 2014 एंड स्टैम्प्ड इट्स अथॉरिटी। इट वॉज हिस्टोरिक, मार्किंग द बिगेस्ट विक्ट्री बाई एनी सिंगल पार्टी इन 30 ईयर्स इन इंडिया, क्रॉसिंग द मेजोरिटी थ्रेश होल्ड ऑफ 272 सीट्स कंफर्टेबली। Now that's why it is thunderous. BJP was led by Shri Narendra Damodar Das Modi for the campaign because of his proven track record of serving as the Chief Minister of Gujarat for over 12 years, from October 2001 to May 2014. His tenure presented the longest continuous and longest total time served by any Chief Minister in the history of Gujarat. His tenure was marked by massive infrastructure expansion,

entitled 12 Years of Narendra Modi Sarkar and Concept of Bharat 2047. Our talker was Prashant Sindhu. This program came to you by Akashwani Rohtak. आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुबह सवेरे में मैं शशि आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है, जहाँ कोई विशेष दिन या पर्व आते ही रहते हैं। ये पर्व हमें हमारी जड़ों से जोड़े रहते हैं। त्योहार का मतलब होता है जब हम किसी दिन को पूरी खुशी से मनाते हैं, भक्तिभाव से मनाते हैं। लेकिन अगर कोई त्यौहार हम पूरी खुशी से मना रहे हैं और उस दिन किन्हीं भगवान के किसी रूप से, किसी विशेष रूप से अगर वो दिन जुड़ा भी नहीं है, तो भी वो त्यौहार ही बन जाता है। लेकिन आज का दिन भगवान विष्णु से जुड़ा है। आज ज़्यादातर जगहों पर आप पाएंगे कि मीठे पानी की छबील लगी हुई है। आज है निर्जला एकादशी का व्रत, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी के व्रत को करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है, इस तरह की कुछ मान्यताएँ हैं। माना जाता है कि इस तरह जो इस पवित्र एकादशी के व्रत को करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम हर दिन को इस तरह से मनाएं कि हम दूसरों के हित में अपने कार्यों को कर सकें। इसके इतिहास की बात करें तो एक बार भीमसेन ने व्यास जी के मुख से हर एकादशी को निराहार यानी बिना कुछ खाए रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तेज क्षुधा बनी ही रहती है, यानी भूख लगती रहती है, तो आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से अपने आप सदगति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और वो स्वर्ग को गए। इसीलिए एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी यानी ये व्रत बिना पानी को ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन इस व्रत का पालन किया और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से माना जाता है कि अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहां साल भर की दूसरी एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिलाओं द्वारा दोनों ही द्वारा किया जा सकता है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, आज है 25 जून और आज के दिन को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस के रूप में। 25 जून 1975 को आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इसी दिन संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल मतलब इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। ये फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था और इसी के साथ आजाद भारत के लोग सरकार के गुलाम बनकर रह गए थे। आम लोगों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी और सरकार तय करने लगी थी कि वो कितने बच्चे पैदा करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या देखेंगे। 21 महीनों तक विपक्ष के सभी नेता जेल में बंद कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। संसद, अदालत, मीडिया, किसी में उनके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। और इसके बारे में और बात करते हैं तो 1967 से 1971 के बीच इंदिरा गांधी ने कांग्रेस और सरकार को अपने नियंत्रण में लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बजाय प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सारे निर्णय लेने लगा था। आने वाले वर्षों में इंदिरा का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि वो कांग्रेस विधायक दल द्वारा निर्वाचित सदस्यों की बजाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में अपने वफादारों को चुनने लगी थी। उन्होंने जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सितंबर 1970 में राजभत्ते समाप्त कर दिए। ये राजभत्ते राजाओं को मिलते थे। ये फैसले अध्यादेश के माध्यम से अचानक किए गए थे। इससे उनकी छवि गरीब समर्थक की बनी। 1971 के आम चुनावों में गरीबी हटाओ का इंदिरा का नारा लोगों को इतना पसंद आया कि 518 से 352 सीटों में वो जीत गई। दिसंबर 1971 में भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलवाई। विपक्ष भी उनके इस कदम की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। अगले महीने ही इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया। अब 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया गया और उन पर 6 वर्षों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामला 1971 में हुए लोकसभा चुनाव का था। इसमें इंदिरा गांधी ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, तय सीमा से अधिक पैसे खर्च किए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया। इंदिरा गांधी ने इस फैसले को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 26 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी गई। आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। आपातकाल लागू होते ही आंतरिक सुरक्षा कानून यानी मीसा के तहत राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की गई। इनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, घनश्याम तिवारी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया। आरएसएस ने प्रतिबंध को चुनौती दी और हजारों स्वयंसेवकों ने प्रतिबंध के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ सत्याग्रह में भाग लिया। सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार की आलोचना करने वाले गिरफ्तार किए गए और पूरा भारत सदमे की स्थिति में था। आपातकाल की घोषणा के कुछ ही समय बाद सिख नेतृत्व

अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने कांग्रेस का विरोध करने का संकल्प किया। देश में पहले जनविरोध का आयोजन अकाली दल ने किया। इसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान के रूप में जाना जाता है। इमरजेंसी लगने के बाद इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी भी बहुत पावरफुल हुए। उन्होंने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए जबरन नसबंदी कराना शुरू किया। इसके कारण कई बगैर शादीशुदा लोगों की भी नसबंदी की खबरें आई। नसबंदी की टीम के गांव में पहुंचते ही लोग भाग जाया करते थे। इसी तरह अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता हुआ पकड़ा जाता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। साथ ही पुलिस को इतनी ताकत मिल गई थी, वो किसी को भी बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकती थी। उसके पास सीधा बहाना होता था कि ये व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल रहा है। यहाँ तक कि फिल्मों पर भी सरकार का दखल था। सरकार तय करती थी कि क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं। अब आपातकाल कैसे हटा, इसके बारे में बात करते हैं। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी ने अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट गई और 30 वर्षों बाद देश में किसी गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ। हालांकि नई सरकार 2 साल भी नहीं टिक पाई और अंदरूनी अंतर विरोधियों के कारण 1977 में गिर गई और इस तरह से अंत हुआ था आपातकाल का।

दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि संविधान हत्या दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया। इसके अलावा उस दौरान जब लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया था, मीडिया की आवाज़ को दबा दिया गया था, तो संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देगा जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए थे।

पुरुषोत्तम आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यानी डे ऑफ द सी फेरर। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और नागरिक समाज में नाविकों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को स्वीकार करना और उनकी सराहना करना है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2010 में मनीला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के राजनयिक सम्मेलन में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। पहला नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में नाविकों की भूमिका को पहचानना और उनके द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों के प्रति आभार व्यक्त करना है। समुद्र के रास्ते होने वाला वैश्विक व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 70% से अधिक है। नाविक हफ्तों और महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं और इस विशाल व्यापारिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस दिन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन विभिन्न अभियानों और सोशल मीडिया पहलों के माध्यम से नाविकों को सम्मानित करता है। ये दिन समुद्री क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल बनाने पर भी केंद्रित होता है।

इस गीत के साथ ही स्टूडियो की घड़ी का इशारा हो चला है कि कार्यक्रम सुबह सवेरे को यहीं संपन्न किया जाए। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। इसी मंगल कामना के साथ अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की। सुबह के 8 बजने को है, ठीक 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में, और ठीक 8:30 से आप फिर से जुड़ जाएंगे आकाशवाणी रोहतक के अपने कार्यक्रमों के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की।

0: बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया।

0: दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट

0: के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं गुलाब सिंह खांडवाल।
3: तेरी मुसीबत

लोक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाब सिंह खांडवाल की गाई कुछ रागनियां।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुलाब सिंह खांडवाल को। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है आपके फरमाइशी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। हेलो रोहतक कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम है आपके फरमाइशी गीतों का। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से और अपने रेडियो सेट पर सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो जल्दी से हमारे 3 टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 255-446, 255-447 और 255-448, 255-446, 255-447 और 255-448। हमारे जो श्रोता रोहतक के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, वो इन नंबरों से पहले रोहतक का एसटीडी कोड 01262 यानी 01262 जरूर लगा लें। एक बात और कि जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में या किसी भी फोन इन कार्यक्रम में बीते एक महीने तक कॉल कर चुके हैं, वो कृपया इस कार्यक्रम में भाग ना लें ताकि हम नए श्रोताओं से जुड़ सकें। तो जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और जब तक हमारे साथ पहले श्रोता जुड़ते हैं, हम आप सब तक भेज रहे हैं ये गीत।

0: और इस गीत के साथ ही हमारे साथ पहले श्रोता जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सुशांत जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो रोहतक में। आपका नाम?
1: धन्यवाद सर स्वागत के लिए। सर मैं गांव पथरवा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से आपका नियमित श्रोता राजेश कुमार बात कर रहा हूँ सर।
0: कैसे राजेश कुमार जी?
1: सर बहुत अच्छा हूँ, आपसे बात हो गई और भी अच्छा हो गया।
0: जी हम भी खुश होते हैं जब भी आप श्रोताओं से जुड़ते हैं। और महेंद्रगढ़ का कैसा मौसम है?
1: महेंद्रगढ़ में ठंडा मौसम हो रखा सर, कल परसों बूंदाबांदी आई थी।
0: हाँ हाँ,
1: तो ठीक है मौसम।
0: ठीक जी जी जी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो राजेश जी आज कौन सा गीत सुनवा दें कार्यक्रम में आपको?
1: शशि खान जी, फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत को गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले, हेमलता और साथियों ने, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है। लक्ष्मीकांत पेरेलाल का संगीत है। गीत के बोल है, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े।
0: जी तो आपकी पसंद का गीत आप तक भेज दें या कुछ और कहना चाहेंगे?
1: बस शशि खान जी और श्रोता भी लाइन पे है।
0: जी धन्यवाद राजेश जी, आपने कॉल किया, आपका गीत आप तक भेज रहे हैं।
1: थैंक यू।
2: बच्चों एक समय की बात सुनो, अंधियारी थी रात सुनो, दीपक चोरी हो गया, चांद कहीं पर खो गया।
3: फिर क्या हुआ?

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे

0: काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: हेलो रोहतक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से और आप जुड़ते हैं अपने अगले श्रोता के साथ। हेलो हेलो हेलो, लगता है ये श्रोता इंतज़ार नहीं कर पाए। ये जुड़े थे हमसे धर्मा सागर जी फाजिलका पंजाब से। खैर, इन्होंने जो ऑफ एयर अपनी पसंद का गीत हमें बताया था वो आप सभी तक और धर्मा जी तक भी पहुंचा रहे हैं। इन्होंने सुनना चाहा था तकदीर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो रोहतक कार्यक्रम में हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
1: साहब जी नमस्कार।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? कैसे
1: जयवीर प्रजापत बोल रहे गांव सांगा भिवानी के पास।
0: हैं जयवीर जी?
1: बिल्कुल ठीक ठाक है भाई साहब। सर जी अपनी सुनाओ।
0: हम भी अच्छे हैं जयवीर जी। और भिवानी में तो अच्छी बारिश हो रही है, सुना है हमने।
1: हाँ बस जाना तो कुछ नहीं फिर है, कुछ गर्मी से राहत मिलेगी।
0: हाँ सही कह रहे हैं। और आज तो निर्जलीय एकादशी भी है।
1: हाँ
0: जी, तो किस तरह से मनाते हैं आज का दिन? कुछ खास रहता है?
1: बस ये वैसे
0: देखिए, ये जो दिवस होता है, वैसे तो इसका पुराणों में जो है इसके बारे
1: हाँ
0: में, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो, जैसे कि आपने देखा होगा, पानी का हम दान करते हैं, जल का दान करते हैं,
1: हाँ
0: तो ये तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी शामिल कर सकते हैं, है ना जयवीर जी?
1: बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। है तो ये गैस को जेट की गैस को जरूर आता है ना जी,
0: हाँ
1: इसको
0: हाँ
1: तो ड्रम बांधते हैं बहुत ज्यादा।
0: जी बिल्कुल। और
1: हाँ
0: इंसानों के साथ साथ जो पशु पक्षी होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का।
1: उनका तो जी बिल्कुल रखा अपने कुंडे जरा के चौगर से पानी के भर भर के। और
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है। कौन सा गीत सुनवा दें जयवीर जी आज आपको? हाँ
1: सर जी आज तो आन फिल्म है पुरानी दलीप कुमार साहब की,
0: हाँ
1: उसका गाना मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया प्यार।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: हाँ मोहम्मद रफी की आवाज है जी, बहुत बढ़िया गाना है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है। तो जयवीर जी, बहुत अच्छा गीत चुना आपने, और आपका गीत आप तक और आप सभी
1: जी
0: श्रोताओं तक भेज रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: सर जी नमस्ते। ठीक है।

0: हम लोग।
1: हाँ हाँ और सोयाबीन की
0: हाँ
1: फसल के लिए मौसम सही है, ये बारिश है?
0: हाँ जी, बारिश हुई कल हमारे यहाँ पे, जोरदार बारिश हो गई है
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन सा
0: जी।
1: गीत
0: तो
1: सुनवा
0: अभी
1: दें आज
0: मतलब
1: आपको?
0: किसानों में भी काफी उत्साह है और फसल की तैयारी होगी। जैसे
1: कौन
0: आपको
1: सा गीत
0: बताऊं
1: सुनवा दें प्रेम जी?
0: जी, फिल्म का नाम तो मुझे शायद, गीत फिल्म का है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत।
1: ठीक है, आपकी पसंद का गीत आप तक भेज रहे हैं, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हेलो रोहतक, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हमारे साथ अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
5: हेलो जी, नमस्कार।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम हेलो रोहतक में आपका। शुभ नाम बताइए अपना।
1: सुरेश कुमार प्रजापत सांगा भिवानी से बोल रहे हैं।
0: सुरेश जी बात कर रहे हैं सांगा भिवानी से। तो सांगा से तो आज दूसरे श्रोता जुड़े हैं सुरेश जी।
1: हाँ
0: आपसे पहले जुड़े थे जयबीर जी।
1: जी, हाँ जी सुने जुड़े थे। अपना
0: जी, तो आप क्या करते हैं सुरेश जी?
1: परचून की दुकान है जी, गाँव सांगा में।
0: अच्छा, काम अच्छा चल रहा है
1: हाँ
0: आपका।
1: काम ठीक है जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: जी फिल्म है जी, जवाब आ जाए मेरी जान, ये है जून का महीना।
0: ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद जी, मैंने पहली बार कॉल लगाया जी, मैं खुश हूँ।
0: अच्छा, हम भी बहुत खुश हैं सुरेश जी, और उम्मीद है कि आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। कार्यक्रमों में पत्र भी लिखा कीजिए आप।
1: ठीक है जी, लिखा करेंगे जी।
0: हाँ, तो आपका गीत आप तक भेज रहे हैं। धन्यवाद कॉल किया आपने।
1: ठीक है।

0: जवाब फिल्म का ये गीत सुनना चाहा था सांगा से सुरेश जी ने। हेलो रोहतक कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। हमारे 3 टेलीफोन नंबर हैं 255-446, 255-447 और 255-448। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: सुप्रभात एंड वेरी गुड मॉर्निंग भाई शशि।
0: सुप्रभात एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अपना नाम बता दीजिए।
1: मैं जी रिटायर टीचर हूँ और सीनियर लिसनर मास्टर सुंदरपाल कोसी गांव के लंगा से भाई साहब।
0: कैसे सुंदरपाल जी?

0: कृपा है जी भाइयों की, भगवान की दया आप लोगों की, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। 70 2 महीने बाद 70 साल में लग जाऊंगा, 70 हो जाएगी।
1: अच्छा 2 महीने बाद 70 साल के हो जाएंगे आप?
0: हाँ जी, एक साल बाद हो जाएगा 70 साल का।
1: अच्छा अच्छा, यानी 69 कंप्लीट कर लेंगे आप।
0: भगवान देखो आपके आशीर्वाद, एक सेकंड का पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो रख रहे हैं 70 साल 70 पकड़ जाए।
1: जी जी बिल्कुल पकड़ेंगे, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और हम आकाशवाणी रोहतक का जो पूरा परिवार है, हमेशा आप श्रोताओं के स्वास्थ्य की कामना करता रहता है। तो सभी कार्यक्रम आप हमारे सुनते हैं और पत्र भी लिखते रहते हैं कार्यक्रम में?
0: बिल्कुल, मैं तो जी 50 वर्षों से और सिर्फ आकाशवाणी AI रोहतक जुड़े रहा जी मैं तो।
1: जी जी जी, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनवा दे सुंदर पाल जी आपको?
0: भाई साहब, पहले तो मैं श्रोता भाई से माफी चाहूंगा कि आज खुद निर्जल रहकर पशुओं को, पक्षियों को या किसी को पुण्य दान जल का।
1: जी जी जी जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: गीत है भाई, आए दिन बहार के।
1: हाँ,
0: रफी की बड़ी बड़ी आवाज है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे।
1: जी, मुझे गम देने वाले तू खुशी को तरसे।
0: ठीक है भाई साहब, सुनवा दो।
1: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: थैंक यू।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुनना चाहा था सुंदरपाल कौशिक जी ने। अगले श्रोता के साथ जुड़ते हैं। हेलो
1: हेलो भाई साहब, राम राम।
0: जी, राम राम। अपना नाम बताइए और स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैं भाई साहब सतबीर बोल रहा हूँ सुनारिया से।
0: कैसे हैं सतबीर जी?
1: बहुत अच्छे हैं भाई साहब, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। क्या करते हैं आप?
1: भाई अब तो क्या करते हैं, कहते मन लग गए, रिटायर हो गए हर एक चीज से।
0: जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात है और जीवन का एक लंबा अनुभव है आपका।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो कार्यक्रम हमारे सभी सुनते हैं आप?
1: सभी सोचते हैं भाई साहब, हम तो इसी के साथ टाइम पास होता है।
0: जी, और सभी तरह के कार्यक्रम होते हैं, जानकारी के भी होते हैं, मनोरंजन के भी
1: सब
0: होते हैं सतबीर
1: जानकारी
0: जी।
1: के भी वही सवाल थे, ये भी सब।
0: जी, तो आज कौन सा गीत सुनवा दें सतबीर जी आपको?
1: आज गीत सुना दो, चल अकेला चल अकेला।
0: लेकिन आपने ऑफ एयर तो कोई और गीत
1: हाँ
0: बताया
1: वो
0: था।
1: सॉरी भूल गया, पुष्पांजलि का था, और दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: अच्छा, तो अब एक बात बताते हैं आपको, आपके दोनों गीत हमने निकाल दिए हैं आपके कहने से, बताइए अब कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: अब तो पुष्पांजलि का ही सुना दो भाई साहब।
0: पुष्पांजलि का?
1: हाँ जी,
0: चलिए, आप तक आपका गीत फिल्म पुष्पांजलि से भेज रहे हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।

0: मुकेश की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म पुष्पांजलि से। सुनना चाहा था सतबीर जी ने सुनारिया से। हेलो रोहतक कार्यक्रम में अगले श्रोता के साथ जुड़ते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नंद किशोर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं नंद किशोर जी?
1: हाँ जी रवि जी ठीक हो?
0: हम अच्छे हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं नंद किशोर जी?
1: मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ जी, रोहतक से।
0: अच्छा, रोहतक ही से बात कर रहे हैं?
1: गांधी कैंप रोहतक से।
0: तो आज पहली बार जुड़े हैं आप नंद किशोर जी?
1: मैं तो पहले भी जुड़ा हूँ लेकिन आपसे पहली दफा बात हो रही है।
0: अच्छा, मुझसे पहली बार बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चलिए,
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है, आपका प्रोग्राम बहुत ही सॉलिड लगता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इतना सॉलिड है कि पूछो मत। मैं तो आपकी आवाज कभी कभी सुनाई देती है
0: जी,
1: है ना?
0: जी
1: है ना?
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी। और कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं आपको हमारे
1: तो
0: केंद्र
1: बहुत
0: के?
1: अच्छे लगते हैं लेकिन मिलता ही नहीं, फोन ही नहीं मिलता जी।
0: हाँ देखिए ना,
1: कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास प्रोग्राम आता है जी।
0: हाँ नंद किशोर जी, ऐसा होता है कि सभी श्रोता ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो श्रोता आज जुड़े हैं वो एक महीने का कॉल करें, कॉल एक महीने का गैप करें, ताकि जो हमारे दूसरे श्रोता हैं जो वेट कर रहे थे वो जुड़ सकें।
1: शुक्रिया जी।
0: आज कौन सा गीत सुनवा दें नंद किशोर जी आपको?
1: साधना फिल्म का है जी, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया।
0: लता मंगेशकर की आवाज में?
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है।
1: पूरा सुनाना गाना?
0: हाँ पूरा गीत सुनवाएंगे नंद किशोर जी। आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत थैंक यू।

0: साधना फिल्म का गीत सुनना चाहा था नंद किशोर जी ने, जो बात कर रहे थे रोहतक से। अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हाँ जी, नमस्कार जी, सत श्री जी।
0: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो रोहतक में। आपका नाम? जी
1: मेरा नाम है जी सतपाल शर्मा, जिला करनाल, गांव औंगद।
0: कैसे हैं सतपाल जी?
1: ठीक है, सब ठीक है जी, सत श्री जी।
0: और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है लेकिन कॉल मिल ही गया आपका।
1: हाँ जी, आज
0: हाँ तो
1: सुबह सुबह मैं सोच रहा था सत श्री के साथ बात जरूर होगी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने जो सोचा वो हुआ। क्या करते हैं सतपाल जी आप?
1: जी मेरी किराने की दुकान है।
0: हाँ, काम अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ जी ठीक है बिल्कुल जी, मैं 65 साल का हो गया।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है, काम अच्छा चल रहा है और आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। और आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: हाँ जी, एक फागुन पिक्चर का है जी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, बड़ा पसंद गाना है मेरा जी।
0: भारत भूषण और मधुबाला पर फिल्माया गया गीत है ये।
1: हाँ जी
0: जी तो सतपाल जी आपका गीत आप तक भेज रहे हैं, कॉल करने के लिए
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी आपका भी धन्यवाद।

0: और अब हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के आखिरी श्रोता जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: सर जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ
0: जगदीश राय गर्ग।
1: जी सर जी,
0: कैसे हैं जगदीश जी?
1: बहुत मजे में हैं जी, और आपसे बात हो रही है तो और भी मजे में हो गए हैं।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और आज कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं आप, जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: सर जी, फिल्म है अनमोल मोती और महेंद्र कपूर जी की आवाज में गीत है ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब।
0: ठीक है, तो जगदीश जी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
2: तुझे तक में कोई नजर झुकता

इस गीत के साथ ही स्टूडियो की घड़ी का इशारा हो चला है कि कार्यक्रम हेलो रोहतक को यहीं संपन्न किया जाए। बहुत सारे श्रोताओं से बात हुई, बहुत अच्छा लगा। जिन श्रोताओं से आज हम बात नहीं कर पाए वो निराश ना हों, दूसरे फोन इन कार्यक्रमों में ज़रूर भाग लें। और जिन श्रोताओं से आज हम जुड़ चुके हैं वो कृपया करके एक महीने का गैप करें ताकि दूसरे श्रोता हमसे जुड़ सकें। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। इसी मंगल कामना के साथ अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम हेलो रोहतक संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र सुबह के 10 बजने को है। ठीक 10 बजे से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं।

वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के तीनों मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यहाँ तक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है दोपहर के 12:30:13। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर ये आकाशवाणी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब

0: प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश

0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,

0: कि जो भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
5: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
5: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
5: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
5: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
5: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
5: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
5: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
5: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
5: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
5: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
5: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है

0: प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजो भाई के अनुसार
2: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
0: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
4: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आपने सुना NCERT द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

याद रखें, जल है जीवन की धारा, हमें मिलकर है इसे बचाना, बिन जल धरती बेजान, यह बात है सबको समझाना।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, उसके ठीक बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक कल तक चलेगी। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा नवाचार पर सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक में शामिल होने आए ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया और इसे उनके लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात बताया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और मानवीय विकास के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। हमारे विकास के लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत जरूरी है। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि वैश्विक जलवायु चुनौतियों का विकासशील देशों पर अक्सर ज्यादा बुरा असर पड़ता है, जबकि इन चुनौतियों के कारणों में उनका योगदान बहुत कम होता है। सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। यह बैठक भारत को ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे ले जाने और एक समावेशी वैश्विक ऊर्जा के भविष्य को आकार देने में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त श्रेणीबद्ध तरीके से ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चंडीगढ़ में जारी एक बयान में श्री विश ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना की मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक प्रदेश में 2,22,000 रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रारंभिक निवेश का बोझ कम होगा और बिजली बिलों में उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना के तहत गैर बकायेदार उपभोक्ताओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा परिवारों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। पात्र उपभोक्ता अपने घरों पर 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित कर सकेंगे, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त राज्य वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया गया है। श्री विज ने कहा कि प्रथम श्रेणी के गैर डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के लिए अब 3 वर्षों तक लगातार समय पर बिजली बिल जमा करने के अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार, बोर्ड, निगम एवं अन्य संस्थाओं के कर्मचारी, जिनमें रोजगार सुरक्षा वाले HKRN कर्मचारी भी शामिल हैं, यदि पिछले बिलिंग चक्र में डिफॉल्टर नहीं है तो वे भी 5 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए योजना का लाभ उठा सकेंगे। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई आज वर्ष 1975 में नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या के उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इस संबंध में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की और आपातकाल के काले दिनों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लगभग 21 महीने आपातकाल का दौर रहा, जिसमें लोगों को काफी यातनाएं दी गई। चंडीगढ़ के महापौर सौरभ जोशी ने बताया,
1: भाजपा चंडीगढ़ द्वारा काला दिवस के रूप में जो 25 जून 1975 की याद में जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी जब हम उस तारीख को याद करते हैं तो हमें वो काला दौर नजर आता है जब संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी कांग्रेस की सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी परिवार द्वारा, और पूरे देश भर के लोगों को जेलों में पकड़कर प्रताड़ित किया गया था।
0: मौसम विभाग ने पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में आज और कल कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान कहीं कहीं

0: हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म अकेली के इस गीत के साथ। शब्द रचना राजशेखर की, संगीत हितेश सोनिक का।

अभी आपने सुना फिल्म अकेली से ये गीत, जिसे लिखा था राजशेखर ने और संगीतबद्ध किया था हितेश सोनिक ने। गायक कलाकार थी सुनिधि चौहान। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जुबिन नौत्यान और आशीष कौर की आवाज़ों में फिल्म शेरशाह से। गीत संगीत तनिष्क बागची का।

अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और आशीष कौर की आवाज़ों में फिल्म शेरशाह से ये गीत। इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, गायक कलाकार श्रेया घोषाल।

अभी आपने सुना कुमार का लिखा ये गीत फिल्म सत्यमेव जयते से। इस गीत को संगीत दिया था रोचक कोहली ने और आवाज़ें थी तुलसी कुमार और आतिफ असलम की। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिलवाले से। गायक कलाकार अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा, गीतकार अमिता भट्टाचार्य, संगीतकार प्रीतम।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ों में फिल्म दिलवाले से ये गीत। इस गीत को लिखा था अमिता भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। श्रोताओं आइए अब सुन लेते हैं ये संदेश।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी रोहतक से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहजादा से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं शाश्वत सिंह और श्यामली खोलगड़े ने। शब्द रचना श्लोक लाल की, संगीत प्रीतम का।

अभी आपने सुना शाश्वत सिंह और शालमली खोलगेड़े की आवाज़ों में शहजादा फिल्म से ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म एक था टाइगर से गीत के और पलक मुच्छल की आवाज़ों में। शब्द रचना अन्विता दत्त की, संगीत सोहेल सेन का।

अभी आपने सुना अन्विता दत्त का लिखा ये गीत फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को आवाज़ें दी थी के और पलक मुच्छल ने, संगीतबद्ध किया था सुहेल सेन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जिला गाजियाबाद से। गायक कलाकार श्रेया घोषाल और सोनू निगम, गीतकार शब्बीर अहमद, संगीतकार अमजद नदीम।

अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ों में फिल्म जिला गाजियाबाद से ये गीत। इस गीत को लिखा था शब्बीर अहमद ने और संगीत किया था अमजद नदीम ने। आइए एक बार फिर से सुनते हैं शब्बीर अहमद का लिखा ये गीत, फिल्म किसी का भाई किसी की जान से ये गीत। गायक कलाकार कमाल खान और पलक मुच्छल, गीतकार शब्बीर अहमद, संगीतकार हिमेश रेशमिया।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अरमान मलिक की आवाज में। इस गीत को लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने। फिल्म का नाम दे दे प्यार दे।

0: अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म दे दे प्यार दे के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, पहले अंग्रेजी में, फिर 2:15 पर हिंदी में, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship.

0: अर्थें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियाँ आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर गट रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: एक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
8: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इसी कनेक्ट

0: आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम खेत खलिहान।

खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाई देखो, जहाँ तक मौसम की हम बात करें, मौसम एक आध बार तो बादलवाई बन जा है, बाकी ज़्यादातर जो तेज़ धूप है और तेज़ धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है वो बढ़ी हुई है। और गर्मी के मौसम में भाई देखो, अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में जो अपना पशुधन है उसका भी ध्यान रखना है और अपनी जो फसल है उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ भाइयों ने जो धान लगाना है वो भी शुरू कर दिया है। और जो भाई धान लगा रहे हैं, एक तो देखो उस जगह पर हम शुरुआत करें जहाँ पर हमारे अच्छे साधन हैं पानी के, और कुछ हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जो सीधी बिजाई करी है वो एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा उनकी जो उन्होंने बिजाई की है उस

0: बिल्कुल बहुत अच्छा जो जिसको हमको बुआरा बन रहा है, और उसमें क्या है कि वह पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम उसमें लगे है, क्योंकि यदि हम मान लो पेड़ काटा हाँ या फिर पौध बना कर और वो लगावे हैं तो उसमें खर्च भी बतेरा आ जा है, और पानी का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा है। पानी को बचाने के लिए जिन भाइयों ने सीधी बिजाई की है वो एक बिल्कुल बहुत अच्छा और सराहनीय काम है। इसलिए हर एक किसान भाई ने कोशिश ये करनी चाहिए वह सीधी बिजाई से जो धान की फसल है वो लेवे, बाकी जिन्होंने प्यो तैयार कर रखी है और वो अपने खेत में इसकी रुपाई करना चाहे हैं तो थोड़ा इस बात का ध्यान देवें कि भाई जिस समय मान लो दो पैरी ज़्यादा हो उस समय पर जो हम खेत की लगाई ना करें, क्योंकि उससे करने से जो पौधा है जो धूप की चपेट में आ जाए है या गर्म पानी हो जाए है और वो पौधा जड़ पकड़ नहीं पाता, उस समय तक वो पौधा मर जाए है। कई बार तो ये देखने में आ जाए भाई लंबा लंबा एरिया भी हमारा एक इस तरह का हो जाए है भाई, जहाँ पे जो धान की फसल है वो ख़राब हो गया है लगाते ही जिस समय हमने मान लो लगाई करी, और फिर बाद में अगले ही दिन उसके जो पौधे हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो एक किसान भाई को इससे बड़ी निराशा मिला है। तो भाई अपना इस बात का ध्यान करें, भाई कोशिश करें कि जो ठंडा मौसम हो शाम सी के टाइम पर जो रोपाई है वो करें, ताकि अगले दिन की जब तक धूप हो उस समय तक हमारी जो पौध है वो अपने थोड़े ही जड़ है वो जमा चुकी हो, इस बात का ध्यान रखना। बाकी हमारी जो दूसरी फसलें हैं उनका भी हमने ध्यान रखना है, जैसे गन्ने की हम फसल की बात करें ये भी एक इस समय पर आकर अच्छी मेहनत मांग है, और इसमें मेहनत का ये काम है भाई इस समय पर आकर तो सिंचाई करना ज़रूरी हो जाए, क्योंकि सिंचाई नहीं करेंगे तो फिर इस समय पर जो धूप ज़्यादा हुआ है वो हमारी फसल को सुखा देगी और हमारी जो करी कराई मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने इस समय पर अपनी जो फसल है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें जो सिंचाई है वो करते रहना है। बाकी जैसे सब्जी फसलों की हम बात करें भाइयों, सब्जी फसल एक इस तरह की फसल हैं अगर भाई यदि हम उनकी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे तरीके से बेलों को तैयार कर रहे हैं और फिर इस समय पर आकर यदि मान लो हम उसमें सिंचाई नहीं कर पाते तो फिर वो हमारी करी हुई मेहनत बेकार हो जाए है, इसलिए हमने उसमें सिंचाई है वो करते रहना है। एक बात का ध्यान रखना है कि भाई इसमें जो ज़्यादा गहरी सिंचाई है वो हमने ना करनी, उसमें सिंचाई करनी है हमने हल्की हल्की करेंगे तो जो सिंचाई करी है उससे जो डोड़ियों के महक का जो पानी है उसको ज़मीन पी जाएगी और हमारी जो फसल है वो नहीं ख़राब होगी। सिंचाई जो हमने करनी है वो शाम के समय पर करनी है, क्योंकि यदि सुबह मान लो हमने सिंचाई कर दी तो फिर वो जो पानी डोड़ियों के अंदर रह गया वो गर्म हो जाएगा और गर्म पानी जड़कर लग गया और नुकसान बढ़िया, तो इसलिए हमने विशेषकर जो सब्जी फसल है उनमें शाम के समय पर सिंचाई करनी है, और जिन भाइयों ने प्यौध लगा रखी है उसमें भी भाई हम कोशिश करें 2-3 बजे के बाद ही 4 बजे के बाद ही जो सिंचाई है वो करें, ताकि उसके अंदर जो पानी हम डाल रहे हैं वो ठंडा रहे और पूरी रात जो पानी ठंडा रहेगा और फिर अगले दिन जब तक धूप बनेगी उस समय तक जो हमारी प्यौध की ज़मीन है वो पानी को पी लेगी और फिर उससे जो हमारी पौध है वो ठीक ठाक रहेगी। और इसी प्रकार जो सब्जी फसल हैं उनमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि मान लो पानी हमने ये दिक्कत के बाद रुक रहा है, चाहे वो हमारी सब्जी फसलों की हम बात करें चाहे पौध की बात करें धान वाले की, तो उसको हम जो पानी है वो निकाल देना है, पानी उसके अंदर दो पैरी में बिल्कुल भी नहीं रखना। यदि हम दो पैरी में वहाँ पर पानी रखेंगे तो फिर जो हमारी फसल है वो ख़राब हो जाएगी और फिर उससे हमारा नुकसान हो जाएगा। बाकी भाइयों हमारी और दूसरी फसलें भी हैं जिनमें आज अपना चर्चा का विषय भी यही रहेगा, जो चारा फसल हैं उनकी देखभाल के बारे में, और जो हमारी चारा फसल जिन भाइयों ने लगा रखी है उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भाई हमने जो चारा फसल उगा रखी है कुछ तो पहले उगाई थी जिस समय पर हमारी गेहूं की कटाई हो गई थी, या जो सरसों की कटाई के बाद भी कुछ भाइयों ने सरसों है बाजरा है लोबिया है या जो दूसरी फसलें वो लगा रखी हैं चारे के लिए, और कुछ ऐसी फसलें जो हम अब भी लगा रहे हैं, तो इन कुछ जो हमारी चारा फसल हैं उनका हमने किस तरीके से ध्यान रखना है इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे भाइयों रागनी वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और प्रवीण कुमारी की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का

0: है साधन, विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार हो जाए, समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड

0: प्रोफेशनल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: भैया खेत खलियान में चर्चा कर रहे थे जो चारा फसल हैं उनकी देखभाल के बारे में, और उसमें देखो गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए जो हरा चारा है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें चरी है, मक्का, बाजरा, नेपियर घास और भी जो हमारे किसान भाई हैं वो ले रहे हैं। इसमें इस समय पर आकर सबसे एक ज़रूरी बात है वह वो नमी बना के हमने रखना ज़रूरी है खेत में। चारा धूप है उससे सूखने से बचाने के लिए हम हल्की सी सिंचाई करते रहें और पशु को जो ताज़ा हरा चारा है वो हम खिलावें। जहाँ तक हम खेत की बात करें, गर्मी के मौसम में मिट्टी जल्दी सूख जाए है और उसको 8-10 दिन के अंतर पर हमने हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और जिस समय हम कटाई कर रहे हैं उसमें भी ये ध्यान दें कि भाई जहाँ से हम कटाई कर ले हैं वहाँ पर थोड़ा जल्दी सूख जाए है, और उसके अंदर जो हम सिंचाई कर रहे हैं उस तो उसमें जो थोड़ा बहुत खाद है, नाइट्रोजन है, वो हमने थोड़ा बहुत ज़रूर छिड़काव करना चाहिए। और जहाँ तक हम बात करें भाई कुछ हमारे चारे ऐसे हैं जिनकी हम कटाई के बाद, जैसे ये है या जो चारा है वो हम उसको ढक दें मल्चिंग के लिए, बाकी जो हरा चारा है उसके लिए तो भाई ये ज़रूरी चीज़ है कि वह जो सिंचाई है वो समय पर करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो हम ये देख लें भाई, मान लो सुबह के समय भी, मान लो जब ज्वार है, बाजरा है, जो भी हमने चारे के लिए ले रखा है, लोबिया है, गवार है, तो जो भी फसल हमने ले रखी है यदि वो सूखा महसूस करे 8-9 बजे के आसपास तो उसके अंदर पानी लगाना बहुत ज़रूरी हो जाए है, और समय पर पानी ज़रूर लगाएं। ज़्यादा पानी यदि हमने लगा दिया तो उसमें फिर वो पीलापन पकड़ जाएगी, इसलिए सिफारिश ये करी जा है वह सिंचाई करनी है अड़की, क्योंकि जब फसल हमारी बड़ी उसके ऊपर खड़ी है तो वो फिर 8-10 दिन तो ले है, वो नमी भी रखी रहे है, लेकिन जहाँ पर हमने कटाई करी है वहाँ पर हम बीच में भी जहाँ तक संभव उसके अंदर हम पानी निकाल सके हैं, क्योंकि जो फुटाव है बाद वाला, बाद में भी कई जैसे काट है आगे हमने लेनी है तो वो हमारी साथ की साथ में तैयार हो जाए, और जितनी भी हम कटाई करते रहो, मान लो एक पट्टा हमने चरा दिया तो फिर उसके बाद जो हम उसकी सिंचाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जो नाइट्रोजन है वो ज़रूर उसका छिट्टा दे दें, ताकि उसको जो गुंजाइश जो खुराक है वो मिल जाए और आगे जो चारा है वो भी तैयार हो जाए। क्योंकि जो कई तरह की काट की जो ज्वार भी आए हैं या कुछ दूसरे हमारे चरी हैं वो भी आए हैं, तो उनको हमने इस तरीके से चलाना है कि भाई जो हम पहले हमने कटाई करी है आगे जो बाद में फिर जो फूट बन के तैयार हुआ वो भी जल्दी तैयार हो जाए और हमारे जो पशु हैं उनको नियमित रूप से जो हरा चारा है वो मिलता रहे। भाई उस समय रह गया तो बात और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और प्रवीण कुमारी की गाई हुई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और प्रवीण कुमारी की गाई हुई। भाई खेत खलियान में चर्चा कर रहे थे जो हरा चारा है उस उन फसलों की हमने किस तरीके से देखभाल करनी है। उसमें देखो आमतौर पर हम जो खाद की सिफारिश करें वो तो ये करें भाई पहले मिट्टी का परीक्षण कराओ उसके बाद फिर हम खाद डालें, और जो भी हम खाद डालें वो थोड़ा सा हमने संतुलित मात्रा में डालना है, ज़्यादा खाद नहीं डालना है। जहाँ तक उसके जो कुरड़ी का खाद है वो डालना बहुत ज़रूरी है, और जो हम कटाई कर रहे हैं वो 5-7 सेंटीमीटर ऊपर से करें, जहाँ पे हमने जो दूसरी गांठ है वो लेनी है उसके लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि नीचे की जो गांठ है उसी से जो फूट है वो तभी निकलेगी जब हम नीचे उसका कुछ छोड़ देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, और भाई विशेष ध्यान रखना है जो सिंचाई का। सिंचाई यदि हम समय पर करते रहे और अच्छे तरीके से जो कटाई है वो करते रहे, और जो छोटी हमारी फसल है उनका भी हम मान लो थोड़ा नमी का ध्यान रखेंगे, सिंचाई का ध्यान रखेंगे, तो हमारी जो चारे वाली फसल है वो हमने अच्छी बढ़िया चारे के रूप में पैदावार देंगी। भाई जो खेत खलियान कार्यक्रम है उसका समय समाप्त हो या शाम 6:20 पर भैया फिर मिलेंगे। सारे बाण भैया ने राम राम।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेत खलिहान। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होते हैं। हालांकि एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर शाम 5:30 पर तीसरी सभा में आपसे फिर भेंट होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 5:30 और 12 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार
1: और आप सभी साथियों को दीपांशु का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं संविधान हत्या दिवस के बारे में। संविधान हत्या दिवस भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। भारत सरकार द्वारा हर साल 25 जून को आधिकारिक रूप से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा काला दौर भी दर्ज है जब इस महान संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। वह काला दौर था आपातकाल। यह आपातकाल 21 महीनों तक लागू रहा। इस दौरान देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह निलंबित कर दिया गया। सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा दिया गया और प्रेस पर पूरी तरह सेंसरशिप लागू कर दी गई, यानी कि बिना सरकारी अनुमति के अखबारों में कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। संविधान हत्या दिवस किसी राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की एक निरंतर चलने चेतावनी है। यह दिन हमें सिखाता है कि नागरिकों की सजगता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षा कवच है। यह दिवस हमें प्रतिवर्ष हमारे संविधान के प्रति वफादार रहने और सत्ता के किसी भी अवैध कदम पर खिलाफ उसका विरोध करने, उसके खिलाफ हमेशा जागरूक रहने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जैसा कि आपने बताया। साथियों, इस दौरान नागरिकों के कई मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई गई थी। संविधान हमारे देश की नींव है, यह हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। संविधान की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ जीने का अधिकार देता है। संविधान हत्या दिवस हमें यह संदेश देता है साथियों के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना

चाहिए और संविधान के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है साथियों जहां कानून का सम्मान हो, नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित हो और संविधान सर्वोच्च रहे। आइए साथियों कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म से गीत। गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: साथ में अभी आपने सुना गुलामी फिल्म से गीत गाया था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने, गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: साथियों, कार्यक्रम में अब आगे बात कर लेते हैं नाविक दिवस के बारे में। नाविक दिवस हर साल 25 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस समुद्र में काम करने वाले लाखों नाविकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2010 में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान हर साल 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस नाविक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद पहली बार 25 जून 2011 को यह दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया और तब से अब तक नियमित रूप से यह मनाया जा रहा है। दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। नाविक महीनों तक अपने परिवारों से दूर रहकर विशाल और अशांत समुद्र के बीच रहते हैं। समुद्री तूफानों, खराब मौसम, समुद्री लुटेरों के खतरे के बीच वे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। कोरोना महामारी जैसी आपदाओं के समय जब पूरी दुनिया थम गई थी, नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों की डिलीवरी कर रहे थे। एक जिम्मेदार वैश्विक समाज के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और उनके योगदान की सराहना करें।
0: बिल्कुल अंजलि, यह दिवस दुनिया भर में उन लोगों के जो है उन लोगों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो नाविक हैं, जो समुद्र के रास्ते व्यापार और परिवहन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथियों, इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के द्वारा की गई थी। नाविक अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समुद्र में बिताते हैं। वे कठिन परिस्थितियों जैसे तूफान हैं, ऊंची लहरें हैं, इनका सामना करते हैं। उनके प्रयासों के कारण ही साथियों दुनिया के अलग अलग देशों तक वस्तुएं, खाद्य सामग्री और अन्य सामान पहुँच पाते हैं। समुद्री परिवहन विश्व व्यापार का, आप भी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। नाविक न केवल आर्थिक विकास में योगदान देते हैं बल्कि देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। नाविक दिवस हमें यह सोचने का, यह समझने का अवसर देता है और उनके साहस, मेहनत और समर्पण की सराहना करने का यह दिवस अवसर देता है।
1: जी बिल्कुल दीपांशु। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुन लेते हैं यह गीत फिल्म डुप्लीकेट से, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म डुप्लीकेट से, जिसे गाया था उदित नारायण, अलका याग्निक ने, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत दिया था अनु मलिक ने।
1: बिल्कुल अंजलि। और आइए साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे। और आप सभी जानते हैं कि जो युवावस्था है वो सपनों और संघर्षों का समय होता है। युवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है और यह है भी। यह वह अवस्था है साथियों, जब व्यक्ति अपने भविष्य के सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए जो है मेहनत करता है। इस उम्र में व्यक्ति के अंदर नई सोच और उत्साह होता है। युवा किसी भी देश की शक्ति और विकास का आधार होते हैं। और अंजलि, युवावस्था में सपनों के साथ साथ कई संघर्ष भी आते हैं, इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सही दिशा की आवश्यकता होती है। इस समय युवाओं को अपने निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए। असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीख लेकर जो है आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच ही युवाओं को सफल बना सकती है। लगन के साथ मेहनत, निरंतर प्रयास और समय के सही उपयोग के साथ सपनों को साकार किया जा सकता है। युवावस्था केवल आनंद का समय नहीं है साथियों, बल्कि अपने भविष्य को बनाने का अवसर है।
0: जी बिल्कुल दीपांशु, युवा अवस्था जीवन का वह ऊर्जावान और परिवर्तनशील दौर है जो बड़े सपनों, असीम संभावनाओं और निरंतर संघर्षों का मिश्रण होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है, जहां उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे उड़ान भरने की प्रेरणा देती हैं।

0: वहीं रास्ते की चुनौतियाँ उसके धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। युवा अवस्था केवल शारीरिक और मानसिक बदलावों की उम्र नहीं है, बल्कि यह एक आत्मखोज का महत्वपूर्ण समय है। यही वह समय है जब एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है और एक जिम्मेदार व्यस्क के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर कदम रखता है। युवा अवस्था सपनों और संघर्षों का एक अद्भुत संतुलन है। संघर्षों की भट्टी में तपकर ही सपनों का सोना निखरता है। जो युवा चुनौतियों से घबराते नहीं हैं और अपने सपनों के प्रति समर्पित रहते हैं, वह अंततः सफल होते हैं। यह अवस्था जीवन की सबसे खूबसूरत अवधि है, जिसका हर पल हमें कुछ नया अनुभव कराता है और हमें कुछ नया सीख भी देता है।
1: बिल्कुल अंजलि, युवावस्था जो है इसमें इस समय में हम जो भी कदम लेते हैं वो हमें सोच समझ कर लेने चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी हम निर्णय लेते हैं वो हमारे पूरी ज़िंदगी को, हमारे पूरे जीवन का निर्णय होता है और इसी पर हमारा पूरा भविष्य टिका होता है। बिल्कुल आपने सही बताया। और साथियों, आइए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और आपको सुनवाते हैं दोस्ती फ्रेंड्स फॉर एवर फिल्म से गीत। गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने, गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: साथ में अभी आपने सुना दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर फिल्म से गीत, गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने, गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।
1: साथियों अब बात कर लेते हैं गलत संगति और युवाओं का भविष्य के बारे में। युवा अवस्था जीवन का वह पड़ाव है जहां व्यक्ति का चरित्र और भविष्य तय होता है। इस उम्र में सही मार्गदर्शन मिलने पर युवा सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, लेकिन यदि गलत संगति का शिकार हो जाते हैं तो उनका पूरा भविष्य अंधकारमय हो जाता है। प्रसिद्ध विद्वानों का मानना है कि मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। युवा अवस्था में मानसिक और भावनात्मक बदलाव बड़ी तेजी से होते हैं। इस समय दोस्तों का प्रभाव माता पिता से भी अधिक किसी बच्चे पर होता है। एक अच्छी संगति जहां युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाती है, वहीं गलत संगति उन्हें विनाश की ओर ले जाती है। युवा किसी भी देश और समाज का भविष्य होते हैं। गलत संगति एक ऐसा दीमक है जो उनके भविष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। युवाओं को स्वयं भी यह समझना होगा कि सच्चे मित्र वही हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ना कि वे जो कि उनके पतन का कारण बने और उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जाएं।
0: बिल्कुल अंजलि, साथियों मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसी संगति व्यक्ति को मिलती है उसके विचार और व्यवहार भी वैसे ही बनने लगते हैं। विशेष रूप से युवावस्था में संगति का प्रभाव सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। अच्छी संगति युवाओं को सफलता की ओर ले जाती है। अच्छे मित्र हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसके विपरीत गलत संगति युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। बुरी आदतें और गलत निर्णय अक्सर गलत संगति के कारण ही आते हैं। इसका सीधा प्रभाव साथियों पढ़ाई पर, करियर पर और व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। युवाओं को अपने मित्रों का चुनाव और आसपास जो भी उनके पास इंसान रहते हैं उनका चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए साथियों जो उन्हें प्रेरणा दें और अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। युवावस्था जीवन का वह महत्वपूर्ण समय होता है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। इस अवस्था में युवा नई चीज़ें सीखते हैं, अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और साथियों जीवन में आगे बढ़ने के सपने भी देखते हैं। लेकिन इस समय उनकी सोच और आदतें हैं उन पर उनके आसपास के लोगों और मित्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति का चुनाव युवाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, एक महत्वपूर्ण निर्णय उनको लेना होता है। कहा जाता है कि मनुष्य जैसे संगति में रहता है उसके विचार और व्यवहार भी वैसे ही बनने लगते हैं। अच्छी संगति व्यक्ति को सफलता, मेहनत और सकारात्मक सोच की ओर ले जाती है।

0: है, जबकि गलत संगति जीवन को गलत दिशा देने में निर्णायक होती है, गलत दिशा में मोड़ सकती है। युवावस्था में कई बार युवा बिना सोचे समझे युवावस्था में साथियों कई बार युवा बिना सोचे समझे अपने मित्रों की बातों का अनुसरण करने लगते हैं, जिसका प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है।
1: जी बिल्कुल दीपांशु, इसी के साथ हम हमारे साथियों को यही सुझाव देते हैं कि वो अच्छी संगति में रहें और अच्छे लोगों से मित्रता करें। इसी के साथ साथियों, समय हो चुका है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का, दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से ले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आज कहा

0: कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की शीर्ष कार्यक्रम, एडिक बोस्टन ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले आईसीसी महिला की T20 क्रिकेट मैच का आंखों दिखाल आप सुन सकते हैं आज शाम 6:30 बजे से मैच की समाप्ति तक, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप कुमार से बातचीत का विषय रहेगा अगेती फूलगोभी की काश्त। ये थे हमारे आज के शीर्ष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी सूरजमुखी फसल की देखभाल विषय पर। कल सुबह 7:15 पर गांधी चर्चा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे बचपन विषय पर गांधी जी के विचार। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल प्रातः 7:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम का समय रहेगा कल दोपहर 12:30 का। कल शाम 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा संसार। कल शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। विषय रहेगा पशुपालन संबंधित समस्या व समाधान। कल 9:30 परिचर्चा आप सुनेंगे, विषय रहेगा जीवन की दार्शनिक परामर्श समस्या से समाधान, और संचालन करेंगे डॉक्टर विनीता नायर। इस परिचर्चा में प्रतिभागी होंगे डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर विकास बेनीवाल और नवनीत चोपड़ा। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा शकरकंदी की काश्त। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पासी नायर व साथियों के गाए लोकगीत एक रंग, फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:00। पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित किया जाएगा कल दोपहर 1:10 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे कल शाम 7:30।

ये फरमाइशों और गीतों पर आधारित कार्यक्रम जो कि पत्रों पर आधारित रहता है, बोले बिस्तरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं कल रात 10 बजे। कल रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। रात 8:25 का समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कालखंड के काले अध्याय की याद दिलाती हैं। रोहतक में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आपातकाल नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या की याद दिलाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है और फ्रांस में भारतीय दूतावास के दखल के बाद पेरिस में चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रोकी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घोटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं। देश में 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के विरोध में रोहतक में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस समारोह में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मीडा सहित प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने इस घटना को कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के लोकतंत्र का अपमान और संविधान की हत्या करार दिया।
3: आज का दिन देश के लोगों के लिए भी, हरियाणा और रोहतक के लोगों के लिए भी और उस लोकतांत्रिक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है।

0: 1975 में आज के दिन जिस तरह से गला घोंट करके हत्या करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र का जिसे हमने लाखों कुर्बानियों और बलिदानों के बाद में अर्जित किया, उसका गला घोंटने का जिस तरह से कुत्सित षड्यंत्र अपनी आप को सत्ता पर बनाए रखने की अभीप्सा से किया था, आज का ये दिन हमें उस कालरात्रि का स्मरण कराने के साथ साथ में उस लंबे प्रेरक संघर्ष के अंततः सत्य विजयी होता है और अंधकार समाप्त होता है उसके बारे में बोध कराने वाला दिन।
1: गजेंद्र शेखावत ने एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में आपातकाल से संबंधित विषय शामिल करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत व हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अनुरोध किया कि रोहतक में आपातकाल ने संबंधित अनुभव केंद्र बनाया जाए। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले सोनीपत के राजेंद्र सिंह व जयपाल एडवोकेट ने अपने अनुभव साझा किए। आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 1975 में नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या के उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस संबंध में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और आपातकाल के काले दिनों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लगभग 21 महीने आपातकाल का दौर रहा, जिसमें लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गई।
2: 51 साल पहले 1975 में आज ही के दिन देश में एक काला व्यवस्था को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश किया था। देश की संवैधानिक अधिकार को हनन करना, लोगों की प्रजातांत्रिक अधिकार को हनन करना, ये नाकाम कोशिश किया था। इसको देश को भुलाना नहीं चाहिए। उस मानसिकता आज भी उन लोगों के मन में है। जब भी उनको मौका मिलता है, देश की असंवैधानिक काम, देश की लोगों की अधिकार को छीनने की काम करते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
3: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
4: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
3: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
1: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। फ्रांस में भारतीय दूतावास के दखल के बाद पेरिस में चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रोक दी गई है। मशहूर स्विस आर्किटेक्ट और फर्नीचर डिजाइनर पियर जेनरेट की डिजाइन की हुई 2 आर्मचेयर की नीलामी आज होनी थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय के दखल के बाद इन चीजों की नीलामी से हटा लिया गया। प्रशासन ने बताया कि यह कदम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशों के बाद उठाया गया। उन्होंने संस्कृति विभाग से कहा था कि वे इस मामले को मंत्रालय के सामने रखें और तुरंत कूटनीतिक दखल की मांग करें। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की कीमती हेरिटेज संपत्तियों को बचाने में समय पर मदद के लिए विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करते हुए ऐसी चीजों की जांच पड़ताल, उन्हें वापस लाने और उनकी वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को दोहराया है। आपातकाल के 91वें वर्ष पर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर भाजपा की ओर से आपातकाल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया गया और आम लोगों पर अत्याचार किए गए।
5: किस प्रकार से कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और उस इमरजेंसी के तहत किस प्रकार से लोगों को बहुत बड़ा हरासमेंट की गई। कांग्रेस के काले नामे आपने देख लिए होंगे, एग्जीबिशन लगाई, देख आंखों में आंसू आते हैं। किस प्रकार इमरजेंसी के समय पर धक्के से नसबंदी की गई, युवाओं पर अत्याचार किए गए, उनके ऊपर मोमबत्ती जलाई गई, किस प्रकार से युवाओं को बांधा गया, बहुत से हमारे जनसंघ के नेता और हमारे आरएसएस के नेताओं को जो भी कांग्रेस के अंगेश आवाज उठाता था उसको अंदर देते थे। उसमें बहुत से नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, बहुत से लोग नेता गिरफ्तार हुए।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में संविधान हत्या दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने 1975 के आपातकाल के काले दिनों को याद किया और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि ये आज भी उस कालखंड के काले अध्याय की याद दिलाती हैं। रोहतक में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आपातकाल नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या की याद दिलाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

भैया ने ये तो सुना भजन राम रखारिए द्वारा गाया गया। और भैया देखो, गर्मी का मौसम है और एक आध बार तो जो बादल चाल के कारण थोड़ा बहुत गर्मी में फर्क भी आ गया है, लेकिन गर्मी का मौसम है और इस समय पे जो अपना अपना पशुधन है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जितना हम फसलों का ध्यान रखे हैं उसी लिए ये ज़रूरी है भाई, हमारी जितनी भी फसल और बाकी की हैं, जैसे हमने शुरू में बात करी है फूलों की, यदि उनकी तरफ भी हमारा रुझान हो जाए, कुछ हमारे जो किसान भाई हैं फसल के साथ साथ जो सहायक धंधे के रूप में भी रखे हैं, जैसे कुछ ये कुंभी बटन इस तरह की जो फसल हैं पैदा करे हैं, तो ये सारी की सारी जो फसलें हैं बहुत लाभदायक हैं और कम एरिया में, जैसे कुंभी की हम बात करें तो ये कम एरिया में बहुत ज़्यादा मुनाफा करते हैं, लेकिन इसमें जो सावधानी है वो रखनी बहुत ज़रूरी है। भाई हम कोई भी सहायक धंधा करें, चाहे हम मछली पालन का करें, चाहे मधुमक्खी पालन का करें, पशुपालन का करें, कोई भी हम काम करें, उससे पहले ये ज़रूरी है कि भाई हम उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो प्रशिक्षण है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि प्रशिक्षण के बगैर यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ये भाई हम नुकसान कर सकते हैं। और यदि हम पहले प्रशिक्षण ले लें तो हमने पूरी जानकारी उस विषय के बारे में, वहाँ जो बिक्री की है बिक्री के बारे में या उसका रख रखाव के बारे में हमने पता लग जाएगा। और जब मान लो हमने पूरी जानकारी होगी, लेकिन फिर भी हम जिस जो भी काम कर रहे हैं, चाहे यदि खेती बाड़ी से संबंधित कर रहे हैं, तो जो अपना एडीओ साहब हैं उनके संपर्क में रहें। और एक इस समय की विशेष बात तो भाई ये है कि हमने मिट्टी और जो पानी की जिन भैया ने जांच नहीं कराई है वो ज़रूर करवा लें, क्योंकि उससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मिट्टी की यदि हम जांच करा लें तो हमारे पोषक तत्व हैं उनका हमने पता लग गया है, और फिर वो जो पोषक तत्व हैं उसी के आधार पर हम खाद पानी है उसी प्रकार हम दे सकते हैं, उसी प्रकार जो हमारा बोर लगा हुआ है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे एड गब्सटन ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट का मैच का आंखों देखा हाल, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Bangladesh of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम टी20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20। मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
4: शुक्रिया दर्पण। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद हैं चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: इसके अलावा हमारे साथ है विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में है। वेलकम विजय।
6: शुक्रिया।
4: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
7: थैंक यू सो मच।
3: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां पर टॉस होने जा रहा है।
8: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harmon, I think you've got the coin. Jolte, your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
9: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
8: I'm just watching your team warming up and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. How do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
9: I think this is really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
8: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
9: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
8: Okay, any changes to your side today?
9: No, we are going with the same 11.
8: Okay, all the best for this big clash.
9: Thank you so much.
8: Harmon, I'll get you to come in. Bowling first, I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
9: Not really, I was just warming up myself.
8: Okay. You're going to be bowling first not here on this pitch. It's a run scoring, it's very, very flat. What's your thoughts on that?
9: Yeah, I think it's a good wicket to bat on, but if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group come.

0: Of strong today.
1: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
0: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
1: Okay. Is it just about the win, or is a little bit of net run rate in there as well?
0: I think first to win, and then let's see how it goes.
1: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
0: Thank you.
1: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
2: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
3: देखिए, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है, उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम। आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कहीं मदद मिलेगी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट, रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए।
4: जी चेतन, बिल्कुल, लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था। हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी, तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन, और आखिरी ओवर तो चर्नी का मेडन विकेट, लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय,
5: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज़ जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें, तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहाँ गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए थे वो थे वहाँ पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहाँ से मैच भारतीय टीम को जिताना, तो वो एक चीज़ है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहाँ से इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
2: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया, और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि सबसे अनुभवी सीमर है, उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है। साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश, दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश।
6: Hopefully so. This is a match which India are supposed to win, and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat that I would like to share. In the 3 matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
2: Right.
6: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
2: Right.
6: Kranti Gaur and Arundhati have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Moline, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner. Mm-hmm. She's a very good fielder and a competent batsman. Mm-hmm. But, shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
2: विजय, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
5: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वो वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, उनका पहला मैच है। और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए। शायद
2: श्रियंका पाटिल

0: की इंजरी उसमें एक बड़ा
1: बड़ा नहीं बहुत बड़ा
0: जी,
1: क्योंकि जिस समय पे ये इंजरी उनको हुई है सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही हैं पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें WPL के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले सीज़न में इंजरी की वजह से पूरा सीज़न बाहर हो गई थी, यहाँ पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच फ्रीक इंजरीज ज़्यादा रही हैं उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस ज़रूर है। लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
2: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा। और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें, तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 011-234-21083 और 011-234-21085। चेतन रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, एंड शी हैज़ अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड हैज़ द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल अर्ली एंड स्ट्राइक अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर। क्या ये सबसे बड़ा कारण बना है उनको प्लेइंग 11 में शामिल करने का?
3: देखिए, जितना मैंने अभी तक पूरा देखा, एक महीना पहले भारतीय टीम वहाँ पहुँची
0: जी,
3: आपके मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रीशफल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हमारा एक स्पिनर की अगर हम बात करें, जो अभी आप बात करें श्रेयंका पाटिल, वो इंजर्ड हुई, वहाँ से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज़ गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक भरोसा, वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला, तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे
0: जी।
3: देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज़ गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे। लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती हैं, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
0: लेकिन चेतन, इससे जुड़ा एक सवाल है, अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
3: देखिए, उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहाँ के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेलें, अगर आप यहाँ स्विंग कराते हैं तो वहाँ तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
1: फॉर मी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बोलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर इज समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, मे बी शी इज नॉट फाइंडिंग हर रिदम देयर। अदरवाइज व्हेन यू वेंट फॉर अ टूर लाइक दिस एंड यू आर मोस्ट experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
0: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
2: Ji, apna naam bataye aur aap kahan se hamare sath jud rahe hain? Good evening.
1: नमस्कार विपिन जी।
0: नमस्कार। चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
4: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160-170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी।

0: 160 170 बना लेती है बांग्लादेश, तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नीदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या
1: जी,
0: होता
1: सभी
0: है।
1: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सैटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते हैं?
2: ऋचा घोष अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे ही जीतती है वो हर जगह की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कंडीशंस देखनी बहुत ज़रूरी हैं, आप किनके खिलाफ खेल रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी आपकी एक सेटल टीम नहीं है। आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं। आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया है। तो आपकी जब बोलिंग यूनिटी सेट नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं। हम कह जरूर रहे हैं जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल वहाँ पर पूछा था, बांग्लादेश भी तो 4 पॉइंट पे है।
1: बिल्कुल,
2: अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहाँ से जीत सकते हैं। उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेल ले, अगर उनका ठीक दिन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहाँ से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी है।
3: जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है। टुडेज मैच चेतन विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया। कई अच्छे स्पिनर्स भी हैं बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके ऑन अ विकेट लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड।
4: नहीं बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं हांक सकते उनको। देखिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बॉलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। जो वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि सबको मालूम है कंडीशंस कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना लाइन वन लाइन टू हर समय तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप बेशक 200 रन 220 रन कर देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेस कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिडल ऑर्डर में इतने शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, 3 नंबर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच द इंडियन मैनेजमेंट हैज़ टू कीप इन ऑर्डर। हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ से बैठ कर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग कि इंडियन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया की बात करें, whoever plays the better cricket will definitely win।
1: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफर्न जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
3: इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और

0: अपना सवाल पूछें। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछें।
1: सर, इंडियन टीम बॉलिंग के बिना चल सकती है, लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता है।
2: जी चेतन, मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं।
3: आज रेणुका यादव, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है, जो अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीक है। और जहाँ तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आइडिया से कि उनके हाथ का साइज़ क्या, मतलब मैं अपने ज़माने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है। कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है, आपके हाथ में वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगी, वो दूसरे जो तेज़ गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी। बट उसकी सीम पोजीशन की आप बात करें, कितना कंफर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं। हर साहब आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं कि वो सीम से वापस आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा। तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है सब।
4: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेंद देखेंगे, तभी आप देखें ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते। वो एक फील रहता है, और सिर्फ एक नहीं, आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर या फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए। कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज़ एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है, और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हम सब उसके साथ चलेंगे।
3: तो मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था, कि मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था। और जब उनके हाथ की गेंद करते तो मेरे हाथ में फिट ही नहीं होती थी, तो मुझे बोला जाता था आप चूज करो, जैसे विजय बोल रहे हैं, तो एक को ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
0: जी, और क्योंकि बॉलिंग की बात चल रही है, विजय, शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है। ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली'स बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
4: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन द रेगुलर बेसिस अर्ली ऑन। आई मीन लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर। शी इज अ विकेट टेकर, यू नॉर्मली सी दैट। व्हेन आई सी अ टॉप order batter bowling, I always feel you think like a batter and then you bowl. What I don't want to face, that's what you try to deliver, and I think that works in a favor when a top order batter is used as an all-rounder.
2: चलिए गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, बट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शशांक, नंदिनी शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए जानी जाती है। पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई, तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड हैं या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की ज़रूरत है?
5: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो आई थिंक it's about the performance of your resources. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form, but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not been her own self. So it's all, the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs, and on Sri Charani to take wickets. So these are the three players who have carried the team, but it's a game of 11 players, you know, so only three players performing. And Deepti Sharma of course took 5 for 10 against Pakistan, but she gave 44 runs of her in her 4 overs against South Africa. You know, as the leading all-rounder in world cricket, she's supposed to do her best against the top teams. So there she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform, and there is the problem. And because of that, there has been tinkering with the team. And as Chetan Bhai said, in a big tournament, it is very important to have a settled team. You know, because of injury or because of unexpected slump in form, you may change one.

0: there, here and there. But in a big tournament, you need to have, you know, a settled army. So that has not been the case with India.
1: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ाएगी. इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम्स लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है. मुदिता, आप कुछ पूछना चाह रही हैं?
2: जी बिल्कुल, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में ICC ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और साफ कह रहे हैं कि मदरहुड इज नॉट द एंड ऑफ द इनिंग्स, इट्स जस्ट अ पॉज. प्रेगनेंसी की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब ICC ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है. 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे माँ बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके. ICC प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को माँ बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं. विजय, एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द ICC.
3: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है. अभी आपने कहा कि मदरहुड स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक पॉज है. बिल्कुल, मुझे लगता है, और ये चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से ICC वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है.
2: जी बिल्कुल. चेतन, मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको. पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पावर प्ले में 59 रन्स, डेथ ओवर्स में 36, जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहाँ पर स्कोर किया था, और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे. असली फ़र्क जो बना जाकर के वो मिडिल ओवर्स का था. भारत ने जहाँ पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर.
4: देखिए, आपने विकेट्स गंवाए हैं, आप सेट होकर आउट हुए हैं. अगर आप जमीमा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई हैं. तो अगर आप यहाँ से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता है लास्ट ओवर्स तक, तो ऑब्वियसली आपके 15-20 रन एक्स्ट्रा जुड़ते हैं. देखिए, हर समय क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे ही आप विकेट्स गंवाएंगे, कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा. वो कहीं आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा. तो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक, देखिए, जो चीज़ गई उसके ऊपर ज़्यादा सोचने का अब ज़रूरत नहीं है. आज जो है, डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमोसफेयर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत दूर है. आज आपके सामने क्या चीज़ है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड रेस्ट. अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने आप जीतेंगे. जी
2: बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे. तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है, कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप?
4: आपको लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे? इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल द वे.
2: तो कहां पर रोकना चाहिए भारत को, बांग्लादेश की टीम को?
3: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश अगर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110.
2: जी शशांक, आप भी इसके आसपास ही?
0: 120 उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ.
2: जी,
0: मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए.
2: जी बिल्कुल, उससे कम में रोक देना चाहिए. तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया. हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में, और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर.
5: फर्स्ट बॉल 20.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 2020 महिला विश्व कप में आज भारत का बहुत बड़ा मुकाबला बांग्लादेश के साथ, और भारतीय टीम को ये मैच जीतना ही होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखना है। बहुत जरूरी है भारत के लिए इस मुकाबले में जीत, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत का समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। स्वागत है आप सभी का भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप के इस मुकाबले में, जो ग्रुप ए का मुकाबला है, और मैं हूं आपके साथ हिंदी कमेंट्री के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं देवायन सेन, स्टैटिस्टिशियन हैं रमेश अर्जुन परब, स्कोर

0: वेंकट बाला रेड्डी। तो ये मुकाबला आज बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से, बहुत जरूरी है इस सेमीफाइनल की रेस को बनाए रखने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। देवायन स्वागत आपका, बहुत जरूरी ये मैच भारत के लिए।
1: Absolutely. Thanks for the warm welcome and a very good evening to everybody who's tuning in as well. It's an important match. It's being played on the same pitch on which India played their last match as well against South Africa at Old Trafford, Manchester. And of course, the toss has been won by the Bangladesh team, which is unchanged from their last match, which featured a good victory against Pakistan. So technically, even Bangladesh in the running for a spot in the Final Four. And India with two interesting changes because they brought in the experience of Renuka Singh and Radha Yadav and left out Prema Rawat as well as the seamer from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those five specialist bowling options and Shefali Verma, of course, also as a backup.
0: Yeah, and in this match, Bangladesh has toss won, that's why Ballebazi has decided that पहली पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है, क्रैक्स हैं पिच में और उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़े से बढ़ सकते हैं। सेकंड पारी में थोड़ी सी भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है, इसी को देखते हुए बांग्लादेश की कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया है ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा, लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है। पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को, 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा। हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है।
1: Yes, it's a positive for India and it'll all probably boil down to that Sunday's match against Australia. But for the moment, they have to take on the two openers from Bangladesh who have made their way out to the middle, Dilara Akhtar and Juwairia Firdaus. And it does look like Shefali Verma is going to deliver the first over. So that sixth bowling option coming into play straight away.
0: बड़ा दिलचस्प है ये क्योंकि शेफाली आमतौर पर नियमित गेंदबाज नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में भरपूर उपयोग हुआ है उनका और पहला ओवर लेकर आ रही है। दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से उनका ये पहला ओवर चलता है। और इस समय स्ट्राइक पर बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, फील्ड पूरी तरह से तैयार है और दिलारा अख्तर इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही हैं। धूप पूरी तरह से खिली हुई है और बस कुछ ही सेकेंड्स में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत को अपना अंतिम मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो भारत अगर दोनों मुकाबले जीत लेता है, नेट रन रेट बेहतर रहता है, जो अभी दूसरे स्थान पर है उसको बनाए रखता है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली गेंद इस ओवर की और इसको सुरक्षित खेलना चाहती थी, बीट हुई पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकली ये गेंद और चारों खाने चित हो गई। ये पहली गेंद कैरम बॉल थी और इस पर पूरी तरह से चकमा खा गई।
1: Yeah, almost playing for the turn, which wasn't there, so well bowled by Shefali.
0: जी हाँ, और शुरुआत भारत के लिए अच्छी हुई है। स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत क्या कमाल करेगा ये देखना होगा। और इस गेंद को खेलना चाहती थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस गेंद ने। किस्मत वाली रही कि विकेट कीपर की तरफ नहीं गई ये गेंद, एक रन लिया और फिर दूसरे के लिए भी पलटी है और ये दो रन पूरे हुए हैं। इन दो रनों के साथ बांग्लादेश की स्कोरिंग की शुरुआत हुई है और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की पारी को समेटा जाए। इस पिच पर 130 के आसपास का रन भी काफी सुरक्षित माना जा रहा है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशा में परिवर्तन किया था, जिसको हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में, इस बार एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ तीन बगैर किसी नुकसान के। जैसा बताया दिवायन ने कि आज भारतीय टीम में दो परिवर्तन हुए हैं, राधा यादव और रेणुका सिंह की टीम में एंट्री हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी और प्रेमा रावत को विश्राम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए मुकाबला। रेस में बांग्लादेश की टीम भी बनी हुई है। ग्रुप ए से जो दो टीम बाहर हुई है वो है नीदरलैंड्स की टीम और उनके साथ साथ पाकिस्तान की टीम। अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप पर, दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज ये देख रही थी कि अंपायर क्या इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी और इस पर कोई रन नहीं। ये ओवर चलता हुआ चार गेंदें हो चुकी है, पांचवी गेंद के साथ तैयार। इस बार शेफाली वर्मा की ये गेंद फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाई, ऑफ स्टंप पर थी गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर, धीमी रफ्तार की गेंद और

0: happens, which could be worrisome if this match rolls over and Bangladesh post a substantial enough score with India chasing. Renuka comes in for the last ball of this over, yet again down the leg side, yet again it should be called a wide, and it is. Three wides, three extras in this over alone. Renuka's over costing India 5 runs thus far from 5 balls, 8 without loss. The first over from Shefali Verma, only 3 runs conceded of it, all 3 by Dilara. And in this over, we have seen a couple of singles for Dilara and Firdaus, and we have then subsequently seen 3 wide balls. Dilara Akhtar facing up once again, 4 from 7 balls, standing well inside the crease with Richa Ghosh standing up to the stumps, which she often does. This time, back of a length, pulled away, fielded in the deep, it is taken. N. Sri Charani takes the catch, India strike with their very first wicket. And Dilara, in going for the big hoik this time, plays it a bit too nicely and it carries all the way to deep square leg. First blood for India, and it's Renuka in her return match to the World Cup striking in a very first over. That'll do her confidence a world of good.
1: बिल्कुल, ये पहला मैच विश्व कप का रेणुका के लिए, और ये गेंद थोड़ी छोटी डाली थी, जानबूझकर फिल्डर उस जगह पर लगाया था, गेंद को पुल किया सीधे हाथों में, ये आसान सा कैच, पहला विकेट गंवाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की टीम की कोशिश यही थी कि जो रन रेट इस समय है वो थोड़ा सा परेशानी का कारण, 2 ओवर हो गए सिर्फ, 8 रन स्कोर बोर्ड पर, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास, उसमें गति देने का प्रयास, और उस गति को दे नहीं सके इस मौके पर बल्लेबाज। और अख्तर आउट होने वाली बल्लेबाज वापस पवेलियन में गई हैं। रेणुका सिंह ठाकुर ने अपने पहले ओवर में भारत को पहली कामयाबी दिला दी है, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। देवायन जैसा कह रहे थे कि दोनों टीमों ने अभी तक जो मुकाबले खेले हैं, दोनों को दो दो जीत मिली है, और पॉइंट टेबल में अंकों के लिहाज से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। नेट रन रेट में भारत जरूर बांग्लादेश से ऊपर है, फिलहाल बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है नेट रन रेट के लिहाज से, भारत दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, नेट रन रेट में वो भारत से पीछे है, अंक इन तीनों टीमों के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए में 4 में 4 जीत के साथ टॉप पर है। और अब नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद, और इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला पॉइंट की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। श्री चरणी आई हैं परिवर्तन के तौर पर शेफाली वर्मा की जगह। शेफाली ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था, रन उन्होंने ज़्यादा दिए नहीं थे, 3 रन दिए थे, लेकिन श्री चरणी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज इस समय भारत के लिए। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, गेंद ने थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर भाग रही है, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटी है, और 2 रन आए जरूर हैं लेकिन आत्मविश्वास भरे ये रन निश्चित रूप से नहीं
0: है। Absolutely, a little bit of a across the line hoik from Firdaus, but just shows the tentativeness or the excitement, the anxiety that the Bangladesh batters are feeling because of this tight start by the Indian bowlers.
1: और अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए शिचरणी, उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खेल दिया सुरक्षित तरीके से। गेंद की उछाल बल्लेबाजों को परेशान कर रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत टर्न भी देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज़्यादा टर्न अभी नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ेगी स्पिनर्स के लिए और भी मददगार होती जाएगी ये पिच। मैनचेस्टर की अगली गेंद को इस बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, दबाव लगातार बनता हुआ बांग्लादेश के लिए, और उसी दबाव में पहला विकेट भी बांग्लादेश ने गंवाया क्योंकि रन नहीं आ रहे थे। अभी तक कोई चौका बांग्लादेश की तरफ से लगा नहीं है, तीसरा ओवर चल रहा है।
0: Absolutely no boundaries and no boundary balls, even the fielding has been quite tidy thus far from India.
1: और क्षेत्ररक्षण की बात भारत की हो भी रही थी, पिछले मुकाबले में 2 कैच छूटे थे और वहां से भारत मैच गंवाया था। हवा में इस बार गेंद, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, लेकिन ये मौका भारत के हाथ से जाता हुआ, 1 कैच छूटता हुआ, और फील्डर
0: यस्तिका
1: भाटिया, उन्होंने गेंद का पीछा किया था, विकेट कीपर खुद इस गेंद तक जाना चाहती थी लेकिन गेंद तक पहुंची नहीं, इस बार पुल करने का प्रयास था, पीछे फील्डर भागी तेज रफ्तार के साथ, विकेट कीपर और एक फील्डर के बीच थोड़ी सी बातचीत, लेकिन कैच वो पकड़ा नहीं जा सका। 12 इस समय बांग्लादेश का स्कोर, 2-1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, श्री चरणी की थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
0: या टाइडी स्टार्ट बाय द वर्ल्ड नंबर 1 रैंक्ड वुमेन्स T20I बॉलर रिसेंटली क्राउन्ड एन श्री चरणी, आल्सो द मोस्ट विकेट्स दस फार इन दिस T20 वर्ल्ड कप, 10 wickets, should have been 11 really, but Yastika Bhatia making a meal of that chance. Herself a fielder, or rather herself a keeper, not

0: आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं। अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास, कवर में गई थी गेंद, हवा में थी थोड़ी देर के लिए, क्या ये मौका भी छूटा है? जी हाँ, एक और कैच छूटता हुआ, फील्डर वहां पर फिर से, अगर हम कहें तो एक रन जरूर लिया है ये दी। इस बार इस कैच को हवा में खेला था, सीधा एक आसान सा कैच था, मुश्किल ज्यादा नहीं थी, और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ।
1: आई थिंक दिस वन मे हैव बीन नंदिनी शर्मा एट कवर्स।
0: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास, फिर से हवा में गेंद, फिर से कैच छूटा, एक और कैच छूटता हुआ, भारत के लिए चौथा ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है, भारत के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है, नंदिनी से यह कैच छूटा है।
1: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini, and the ball is following around because she's been moved now to short third, and that's exactly where the ball went off the outside edge, and she made a good effort this time actually getting across to it, and having got there she'll be disappointed that it came out.
0: Ji haan, Bharatiya dressing room ke chehre bhi mayus kyunki is tarah ke mauke nahi chode ja sakte. Agli gend ko is baar long on ki taraf khela 4 run ke liye.
2: Ye laga Abha ka chauka.
0: फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया फिरदौस ने, और सीधे बल्ले से अपने सामने की तरफ खेला, सुरक्षित स्ट्रोक, कोई फील्डर वहां पर थी नहीं, और ये चौका एक और आता हुआ बांग्लादेश के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 27 एक विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है, दो गेंदें अभी भी बची हुई हैं, और इस ओवर में दो मौके भारतीय फील्डर नंदिनी के हाथ से फिसले हैं। अगली गेंद इस बार स्वीप करने का प्रयास कामयाब हुई है, फील्डर हालांकि डीप में है, एक रन से ज्यादा मिलेगा नहीं, इस एक रन से स्कोर में और इजाफा होता हुआ बांग्लादेश के लिए, और स्कोर बढ़ता हुआ 28 एक विकेट के नुकसान पर। अगर चारों कैच पकड़ लिए गए होते अभी तक तो क्या स्थिति होती बांग्लादेश की।
1: Yeah, and especially the three in succession which have come off the last couple of overs, including two of them off Sri Charani's over.
0: अगली गेंद इस बार हवा में फिर से खेला, हालांकि फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए। गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: तो इस तरह से चौके के साथ पांचवें ओवर की समाप्ति, और इस समय बांग्लादेश का स्कोर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर।
1: Yes, for the first time, I think, in this innings, Bangladesh and their run rate going over 6 runs per over. So that's a little bit of a danger sign from the Indian perspective, because they've still got some batting up firepower to come. The likes of Sharmeen Akhtar, they've got the skipper, Nigar Sultana, they've got Ritu Moni, Shorna Akhtar, who can whack the ball around as well. Then some of the all-rounders, Rabia Khan, who can also wield the long handle. So India need to start taking those catches to begin with. Lots of chances shelled. Juwaria Firdaus will believe that she can go and buy a lottery ticket tonight, because she's been dropped 3 times by India. Dropped on 3 by Yastika Bhatia, dropped on 9 by Radha Yadav, and dropped on 13 by Nandini Sharma. Nandini Sharma also letting Shobhana Mustari get away when she was on 1 herself. So this partnership also beginning to look a little bit threatening. 24 runs realized between the two of them. And more importantly, over the last couple of overs, we are seeing the boundaries beginning to come. Some chances taken, especially by Firdaus, the way that she's going across the line, trying to exploit the gaps on the onside. We are still inside the power play. One more over of the power play to come. Only two fielders allowed outside the inner ring. And the Bangladeshi batters are looking to maximize those scoring opportunities as much as possible. India desperate for wickets. Who do they turn to? They have Deepti Sharma. But for the moment, they've gone back to Shefali Verma. And Shefali Verma, the very first ball is played away on the offside of the outside edge, and it will fetch a couple of runs for Firdaus, who moves along now to a personal tally of 20, and the Bangladesh score moves along to 34 in effect. Three bowlers used thus far. Shefali Verma in a second over, none for 5 at the moment. Renuka Singh Thakur, 2 overs, 1 for 14. And Sri Charani, 1 for 15, beg your pardon. And Sri Charani with none for 14. The next ball outside off stump, smacked away, straight past the bowler for 4.
2: Ye laga Abha ka choka.
1: Just outside off stump, and she was very quick to latch onto it. It was overpitched a little bit, and that's why she was very strong in smacking this straight down the ground. And with the mid-off inside the circle, it proved to be a safe shot, Dharmendra.
0: जी हाँ, निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ये शॉट खेला था बिल्कुल खाली जगह में।
1: The next ball just outside off stump, looking to cut it away, very close to the outside edge as it is consumed by the gloves of Richa Ghosh. Richa thus far has done a good job, has come up with an indifferent performance in this tournament. Every now and then she plucks up.

0: some great catches, some terrific stumpings, but also tends to miss a few chances. And today, India don't want that to happen because they're already getting a lot of those from the outfielders. Straight on the stumps, this time played away on the offside, looking for a quick single, but very quick to pounce on the ball was Jemima Rodrigues, coming in from point and getting a little bit of support along with one of her teammates as well. Shefali Verma operating with two fielders on the onside. Deep mid-wicket is Radha Yadav and Smriti Mandhana is fielding at long on. The next ball worked away on the onside. Deep mid-wicket should come into play. It's been played quite nicely, so it will only result in one. Firdaus was pushing hard, but Mustari was very quick to turn her down and tell her that let's keep it down to one. One ball left in the power play. It's been a tidy performance from Bangladesh, although India have missed so many chances, and that's proved to be their undoing in a sense. However, considering all of that, 39 for 1 is a good score. 7 runs already of this over. How do they try to finish off this final over in the power play? Shefali Verma just looking to make a few adjustments in the field, possibly. A strong offside ring. There's a mid-off. There's a cover. There's a point as well as a backward point. This time pulled away on the onside, but there is a fielder in the deep. It goes straight towards Radha Yadav. Only a single conceded. 6 overs done. 40 for 1. The power play is over with Shefali's over producing 8 runs.
1: तो पावर प्ले बांग्लादेश के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहा है. एक विकेट सिर्फ गंवाए हैं. 40 रन इन 6 ओवरों में बनाए हैं बांग्लादेश ने. हालांकि मौके अगर भारत ने भुनाए होते तो निश्चित रूप से स्थिति बांग्लादेश के लिए मुश्किलों भरी हो सकती थी. लेकिन फिरदौस ने जीवनदान का भरपूर फायदा उठाया. उन्होंने अभी तक 23 गेंदों में 25 रन बनाए हैं, 4 चौके लगाए हैं. बांग्लादेश की तरफ से अभी तक कोई छक्का आया नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत कही जा सकती है बांग्लादेश के लिए. शेफाली वर्मा का ये दूसरा ओवर था. कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 2 ओवर किए हैं, 11 रन खर्च किए हैं, 5.50 की औसत से रन दिए हैं. किफ़ायती रही हैं. श्री चरणी ने 2 ओवरों में 14 रन दिए. क्या उस छोर से गेंदबाजी में कोई परिवर्तन होगा जहां से श्री चरणी अभी तक गेंदबाजी कर रही थी? उनका पिछला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था, जिसमें 2 मौके भारत के पास आए थे, हालांकि दोनों फिसल गए थे नंदिनी के हाथों से. नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है. ये मुकाबला काफ़ी अहम है दोनों ही टीमों के लिए. अगर बांग्लादेश की टीम इस मैच को जीतती है तो सेमीफाइनल में रेस उसका भी बना रहेगा, और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब होती है तो उसके 6 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी भारतीय टीम. दक्षिण अफ्रीका का भी आज मुकाबला होना है भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से नीदरलैंड के साथ, और उस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि फेवरेट है दक्षिण अफ्रीका की टीम. आसानी से वो मैच जीत सकती है और अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है. दिबायन
0: एब्सोल्युटली. एंड फॉर इंडिया वन बिलीव्स दैट परहैप्स द क्रंच गेम विल बी द संडे एट लॉर्ड्स व्हेन दे फेस द ऑस्ट्रेलियंस. एंड वन थिंग्स फॉर श्योर, व्हाइल ऑस्ट्रेलिया आर अ माइटी टीम, history has shown that one team which has upset them a few times has been the Indians. So India need to perhaps just play a slightly braver brand of cricket. Thus far they've seemed a little confused about the ideal 11, even today 2 changes. So if that continues, then that gives a little bit of an advantage to Australia. But I personally believe if they can rope in one more bowling option, that can do them a world of good. At the moment they're playing an extra batter. In the initial matches it was Bharti Fulmali. Since then they've gone back to Yastika Bhatia. But if they drop one of those or both of those and play a bowler instead or a bowling all-rounder, then that just enables them to play Jemima Rodrigues at 3, Harmanpreet at 4, and then maybe go from there. Maybe have a Deepti Sharma or a Richa Ghosh at 5 and 6 respectively. And then the bowlers, all-rounders and the rest of them can get the runs.
1: शायद बल्लेबाजों की तरफ से आत्मविश्वास अभी तक टीम मैनेजमेंट को मिला नहीं है. अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें या उससे नीचे की बात करें तो उतना सफल अभी तक भारत का सफर रहा नहीं है. टॉप ऑर्डर ने अगर बल्लेबाजी की है तो भारत ने अच्छे स्कोर खड़े किए हैं, भारत को जीत मिली है. तो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं इस मैच से भारत को वापस लाना होगा अगर सेमीफाइनल और आगे का रास्ता तय करना है तो. बहुत ज़रूरी है भारत के लिए मुकाबला हर लिहाज से. और अब नए ओवर की शुरुआत हो रही है. नंदिनी शर्मा गेंदबाजी के लिए आ रही हैं. 6 मैचों का अनुभव, 6 विकेट ही उनके नाम पर हैं और श्री चरणी की जगह उनको मोर्चे पर लगाया गया है. 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बनाए हैं 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर. फिरदौस 25 रन बनाकर खेल रही हैं, 23 गेंदों का सामना किया है. स्ट्राइक पर मुस्तारी, जिन्होंने 5 गेंदों में 7 रन बनाए. पहली गेंद को सामने की तरफ खेला सीधे बल्ले से और

0: पैट पर टकराई, एक हल्की सी अपील, थोड़ी सी बातचीत इस समय कप्तान और गेंदबाज के बीच, विकेटकीपर भी इस बातचीत में शामिल हुई हैं और वरिष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा भी पहुंच गई हैं। डीआरएस क्या लेंगी, एक लंबी बातचीत चलती हुई, ऐसा लग नहीं रहा कि डीआरएस लिया जाएगा क्योंकि संभवतः गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी।
1: या एग्जैक्टली व्हाट ऋचा घोष अपीयर टू बी इंडिकेटिंग व्हेन शी वाज कॉल्ड इन फॉर दैट लिटिल कॉन्फ्रेंस, नंदिनी वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट दैट वाज गोइंग ऑन टू हिट लेग स्टंप, but it would have started around middle in leg and was also shaping down the leg side, so at best it might have stayed marginal because the on-field decision was not out, at best it probably would have been an umpire's call, so maybe it was just okay that they didn't go for it eventually, and the umpire Kim Cotton now just having a word with Harmanpreet Kaur about something, maybe about follow through perhaps, just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
0: Nandini Sharma का ये over आगे बढ़ता हुआ, दूसरी गेंद इस over की करने के लिए तैयार, over the wicket गेंदबाजी कर रही है समय, और इस बार गेंद को खेलना चाहती थी on side में, बल्ले का किनारा लिया और गेंद चार रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: ये आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक था नहीं, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्ले का मुंह उसी तरफ था लेकिन बल्ले का किनारा लिया इस गेंद ने, थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी, और चार रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन एक विकेट के नुकसान पर, चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई, सातवां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 एक विकेट के नुकसान पर। नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर एक रन आया है बांग्लादेश के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 56 एक विकेट के नुकसान पर, आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं, और इस बीच में अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट बांग्लादेश के लिए तोहफा।
1: एब्सोल्युटली द इंडियन डिसिप्लिन नाउ एक्सटेंडिंग टू द बॉलिंग एज वेल, इट्स अ वेरी मार्जिनल कॉल बट इट्स अ कॉल नॉनदलेस, इट इज अ नो बॉल, इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेयर नंदिनी'स फुट नॉट इनफ ऑफ इट वॉज जस्ट बिहाइंड द क्रीज, द लाइन ऑल्सो बिलोंगिंग टू द अंपायर, सो नाउ दिस पुट्स प्रेशर ऑन मुस्तारी बिकॉज शी वॉज नॉट ऑन स्ट्राइक बट शी हैज द लाइसेंस टू रियली गो फॉर इट एंड जस्ट रब सम सॉल्ट इन टू द इंडियन वूंड्स।
0: बांग्लादेश की पारी का ये अतिरिक्त पांचवा रन जरूर था लेकिन फ्री हिट ही भी अब मिला है और उस पर क्या कुछ होगा मुस्तारी की प्रतिक्रिया, और इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप की ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन और जो वो फ्री हिट है वो जारी रहेगा, तो अतिरिक्त रन तोहफे में जरूर आया है, और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप वो गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए, भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है

गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए। भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है